सब ते उजता की सुभा बनी नानक के गुणनाम सुखमनी। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद पदार खासे दस्खत का पातशाही दसवीं अकाल पुरख की इच्छा हमने सब

चक्र चहन अर बरन जात अर पात नहन जेह रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत के अचल मूरत अनभव प्रकाश अमितोज कही जय।

0: राज करेगा खालसा की रहना कोई पार होए समझेंगे बच्चे शरण होए
1: उड़गी स्वामने की कर पूरा पासार लंका बाजे फले काने कलंक अवतार चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुक्ते स्वामा स्वम सदा स्वम भुक्ते दुकाल प्रणा सिद्ध आरं सुरुपे सदाय नसंदे अपांगं भुक्ते देखते गोपते नसर बेजर या पत अधनान गुरुगो मिशन क्या काल पुर्की साय दरबार में तो दरबारा सचमन के दरबारा लक्ष्मी कृत्रिम दरबारा सब देख देख नमस्कार अनुरा नान गुरुगो मिशन

प्रसाद कवित। हुक मलहारी का जगत है, विभूत धारी की दुआ मसान वास करियो करत है। घुघु मठ वासी लगे डोलत उदासी, मृग तरवर सदी मोन सादे ही मरत है। बिंद के सदैया ताहे हिंज की बटैया, देद बंदरा सदी उपाय नांगे ही फिरत है। अंगना अधीन काम क्रोध मैं पर बीन, एक ज्ञान के बिहीन छीन का सिक तरत है। भूत बन चारी चित छोना सब दुदादारी, पवन के हारी सो भुजंग जानियत है। तृण के भचया धन लोभ के तजैया, ते तो गौवन के जैया मृग भैया मानियत है। नाभ के उडैया ताय पंछी की बडैया, देत बा गुलाब रुड़ाल ब्रिक ध्यानी ठानियत है।

करते हैं। भूमि के बसयताय भूजरी की जया कह नव के उडया सुचरया कह बखानिया फूल के बजयताय बांद्र की जया कह आदि से फिर तो बोध कह बछानिया जल के तरया को गंगेरी सिकात जग आग के बचया सुचकोर सम्मानिया सूरज सिवयाता है काल की बढ़ाई दे चंद्रमा सिवैया कौ कवि का पहचानिया नारायण कच्छ मिंदुआ कात सब काल नाव काल जय ताल में रहत है गोपीनाथ गुजर गोपा सब तीन चारि किस नाम के महंत लहियत है माधव पवर आओ टेरु को कन्हैया नाम कंस को बधैया जम दूत कहियत है मूड़े रूड़ पीटत न गुड़ता को भेद पाव पूजत न ताहे जाके राके रहियत है विश्वपाल जगत का दीन दयाल बैरी साल सदा प्रतपाल जम जाल दे रहते हैं जोगी जटाधारी सती सच बड़े ब्रह्मचारी त्यान काज भूख प्यास देह पसत हैं निवली करम जल होम पावक पवन होम आदमुख एक पाए ठांडे न बहत हैं मानव फनिंद देव दानो न पाव भेद वेद औकतेब नेत नेत के कहते हैं नाचत फिरत मोर बादर करत कोर दामनी अनेक भाव करियो ही करत है चंद्रमाते शीतल ना सूरज ते तपते इंद्र सोना राजा भाव भूम को भरत है शिव से तपस्वी याद वर्मा से न बेचारी सनत कुमार सी तप्य सनानत है ज्ञान के भीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है एक शिव भये एक गए एक फेर भये राम चंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं ब्रह्मार विष्ण के ते वेद और पुराण के ते सिमृत समूहन के होय होय बिताए हैं मोनदी मदार के ते असुनी कुमार के ते अंसा अवतार के ते काल बस भई हैं पीर और पिकाम्बर के ते गणिना परते ते भूमि ते होय का फेर भूम ही मिलाए हैं जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र की छाया कई कोस लो छलत है बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रव को दलत हैं मान से मही पौधी लीव का से छत्रधारी बढ़ो अभिमान भुज दंड को करत हैं दारा से दिली सर दुर्योधन से मानदारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत हैं सिज दे करे अनेक तोपची कपट भेज पोज दी अनेक दाने वावत है शीस का कहाँ पयो माल्य जप काटत अनेक डन सौतो न डंडा अष्टांग अथ तीस को कहाँ भयो रोगी जप डार रहो उर्दमुख मन तिन मूढ़ निहुरायो आज ईस को कामना दिन सदा सदाम न प्रवीण एक पाव न बिहन कस पावे जगदीश को शीश पट कत जाके कान में खजूरा तस मुंड पट छट कत मित्र

पेड़ जो घसत सिज बृछन सो माटी को बछैया बोल पूछ लीजे जोग सो काम न अधीन काम क्रोध मैं परवीन एक भाव न विहीन कस भेट पर लोग सो नाचोई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करी हुई करत है एक पाए ठाडे सदा बन में

किन दिन कस के तरत है। जैसे एक स्वांगी कहूं जोगी अबरागी बने का मुंह संन्यास भेष बन के दिखावई। कहूं पौन आहारी कहूं बैठ लाए तारी कहूं लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई। कहूं ब्रह्मचारी कहूं हाथ पे लगावे बारी कहूं दंड तारी।

विहीन कैसे ज्ञान को विचारही। ताप के सहते जो पाइये अताप ना, ताप ना अनेक तन कायल सहत है। जाप के किए ते जो पाइयत अजाप दे पू

कहू पो मुंडिया सन्यासी कहू जोगी पो कहू ब्रह्मचारी कहू जति अन मानवो हिंदू तुरक कहू राव जी इमाम साफी मानस की जास भय के पहचान वो करता करीम सोई राज रहीम ओई दूसरों पेद कोई भूल ब्रह्मान वो एक ही की सेव सब ही को गुर देव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान वो देवरा मसीह सोई पूजाओ निवाज ओई मानस भय एक पर अनेक प्रमाव है देवता देव जज गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे नारे देशन को पेश को प्रमाव है एक नैन एक कान एक धय एक बा

जैसे एक आग ते कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे हो कह फिर आग में मिलाएंगे, जैसे एक दूर ते अनेक दूर पूरत है दूर के कनु का फिर दूर ही समाएंगे, जैसे एक नाते तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहेंगे, तैसे भी स्वरूप ते अभूत प्रकट हो ताय ते उपर सब ताय में समाएंगे, कहते कच्छ मच्छ कहते उनको करत भच्छ कहते अच्छ वच्छ हो सपच उड़ जाएंगे, कहते नव बीच अच्छ पच को करेंगे।

काल ही चबाहेंगे। तेज ज्यों अतीज मैं अतीज जैसे तेज लीन ताहे ते पसब ताहे में समाएंगे। कुकत फिरत किते रोवत मरत किते जाल में डुबत किते आग में जरत हैं। केते गंगवासी केते मदीना मक्का निवासी केतक उदासी के प्रमाई फिरत हैं। करवत सात केते भूम में गड़त केते सुआ पे चढ़त केते दुखा परत हैं। ज्ञान में उड़त केते जल में रत केते ज्ञान के बिन जक जारे ही मरत हैं। शोध हारे देवता विरोध हारे दानु बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी कस हारे चंदन लगाए हारे चुआ चार पूज हारे पान चढ़ाए हारे लापसी गा हरे गोरन मना।

प्रज्ञा प्रकाशी अच्छेदंग अच्छायादत वह अविनाशी न जातंग न पातंग न रूपंग न रंगे नमो आद अभंगे नमो आद अभंगे किते कृष्ण से कीट कुटा उपाय उसारे गड़े फिर मिटे बनाए अगाध अभय आदत वह नासी परे अंग परा परम पूरन प्रकाशी न आदंग न ब्यादंग अगाधंग स्वरूपे अखंडत प्रताप आद अच्छा।

के भवाने अचित्रे नारायण नारंगं नारूपं नरेकं नलोभं नचोभं अभूतं अभेकं न सतनं न मित्रं न नेहं न गेहं सदा सदा सर्व सर्वत्र स्नेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं अजोनि अछायादद्व अजोहं न जन्मं न वर्णं न वर्णं न व्याधं न रोगं न शोकं अभय निर्विखादं अछेदं अभेदं अकर्मं अकालं अखंडं अभंडं प्रचंडं अपालं न तातं न मातं न जायतं न कायं न नेहं न गेहं न भर्मं न भायं न रूपं न भूपं न कायं न कर्म।

नृयोक्तं प्रभात् अनुक्तं प्रतापे अच्युक्तं अच्छायात् अविक्ते अथापे विभुक्तं अच्छायात् अच्छा स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे न नेहं न गेहं न शोकं न साकं परेयं पवित्रं पुनीतं अतागं न जातं न पातं न मित्रं न मंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मं न भर्मं न सर्वं न साके न भर्मं न चर्मं न कर्मं न बांके न सत्र न मित्रं न पुत्रं स्वरूपे नमो आदरूपे नमो आदरूपे कौं कंज के मंज के भरम भूले कौं रंक के राज के धर्म लूले कौं देश के भेष के धर्मता में कौं राज के साज के बाजता में कौं अक्षर के पक्षर के सिद्ध सा दे कौं सिद्ध के बुध के बृदला दे कौं अंग के रंग के संग देखे कौं जंग के रंग पेखे कौं धर्म के परम के हरम जाने कौं धर्म के परम माने कौं चार चेष्टा कौं चित्र रूपं कौं परम प्रज्ञा कौं सर्वभूपं कौं नेह ग्रहं कौं देह दुखं कौं औखदि रोग के शोक सोखं कौं देव विद्या कौं दात बानी कौं जाच गंधर्व किन्नर कहानी कौं राज सीसाद की तामसी हो कौं जोग विद्या तरे तापसी हो कौं रोग रहता कौं जोग जुगतं कौं भूम की भुगत मैं भर्म भुगतं कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हो कहूँ जच विद्या तरे मानवी हो कहूँ राजसी हो कहूँ राज कन्या कहूँ सृष्ट की पृष्ठ की रिष्ट पुण्या कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम बानी कहूँ कोक की काव कथा कहानी कहूँ अद्र सारंग कहूँ भद्र रूपं कहूँ मद्र बानी कहूँ क्षुद्र स्वरूपं कहूँ वेद विद्या कहूँ काव रूपं कहूँ चेष्टाचार चित्रंग स्वरूपं कहूँ परम पुराण को पार पाव कहूँ बैठ कुरान के गीत गव कहूँ सिद्ध शेखं कहूँ ब्रह्म धर्मं कहूँ वृद्ध अवस्था कहूँ बाल कर्मं कहूँ ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूँ नेह देहं कहूँ त्याग गृहं कहूँ जोग भोगं कहूँ रोग रागं कहूँ रोग हर्ता कहूँ भोग त्यागं कहूँ राज रितं।

कहूं पहलवी पस्तवी संस्कृति हो, कहूं देश भाखया कहूं देवबानी, कहूं राज विद्या कहूं राजतानी, कहूं मंत्र विद्या कहूं तंत्र सारंग, कहूं जंत्र जितं कहूं शस्त्र तारंग, कहूं होम पूजा कहूं देव अर्चा, कहूं पिंगुला चारणी गीत चर्चा, कहूं बिन विद्या कहूं गान गीतं, कहूं मलेच पाख्या कहूं वेद रितं, कहूं नृत्य विद्या कहूं नाग बानी, कहूं गारुड़ गूढ़ कथा कहानी, कहूं अक्षरा पक्षर

नमो नाथ पूरे सदा सिद्ध दाता अछेदी अक्षय आदत वैविदाता नात्रस्तं नाग्रस्तं समस्तं स्वरूपे नमस्तं नमस्तं तुअस्तं अभूते तव प्रसाद पादड़ी छांदे अभ्यक्त तेज अन्व प्रकाश अच्छा स्वरूप अद्वै अनाथ अनटुट तेज अनखट भंडार दाता दुरन सर्वंग प्रकाश अनुभूत तेज अनचेज गात करता सदी हरतासनाथ आसन अडोल अनुभूत कर्म दाता दयालंभूत धर्म जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जय जय पुत्र भ्राद नहीं मित्र मां जय कर्म परम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गे नहीं ब्योत बा जय जात पार नहीं शत्रु मित्र जय नेह गे नहीं चहन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं भरम भी जय कर्म परम नहीं जात पानु नेगे नहीं पितृमा जय नाम थाम नहीं बर्ग ब्याज जय रोग

उपगते जे काल बियाल कट्यो नांग अच्छा सुरवख अवंगे जे नित नि उचरंत बीज अलख रूप कथत कति जे अलख रूप आसन डोल जे अमित अच्छा अतुल जे त्यान काज मुन जन अनंत कई कल्प एक स्वादंत दुरंते तन सीत गाम बरखा संत कई कल्प एक आसन बितंते कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तदप पावत न पार कोई उर्दमा देश कई उर्दमा पाव जुलंत कई सिमर शास्त्र उच्चरंत वेद कई को काप कथत कति कई अगन होत्र कई पवन आहार कई करत कोट मृत्यु को आहार कई करत साक पै पत्र भच नहीं तदव दे होवत प्रतच कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रति कहूँ वेद रीत जज्ञात कर्म कहूँ अगन होत्र कहूँ।

जय जम्पो जुगण जू जुअंग भय कंपो मेर पे अल्प तप ताप सर्व जलेर थलंदन उचरत इंद्र कुमेर बलंग अनखेत स्वरूप अभेद अभ्यंग अनखंड अभुद अच्छे दक्षिंग अनकाल अपाल दिया लस्वंग जे ठट्यंग मेर आकाश भुवंग अनखंड अमंड प्रचंड।

तापन शोक सुखं जय रोग न शोक न भोग भियं जय खेद न भेद न छेद जय जात न पात न मात पितं जय रचं छत्री छत्र जय राग न रेग न रोग बणं जय द्वैक न दाग ना दुख गणं जय अंड ते ब्रह्मंड रचियो दस चार करी न खंड सचियो रज ताम ते अतेज के अनुभव पद आद प्रचंड लियो श्रिय सिंध रोस बिंद न गिंद न गं श्रिय जच्छ गंधर्व फणिंद भुजंग रच देव अदेव अभेव नरंग नरपाल कृपाल कराल त्रिगंग नरपाल नरपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रच अंडज सेत दूत भुजंग किय देव अदेव सराध पितंग अनखंड प्रताप प्रचंड कतंग प्रभ जातन मातन ज्योत दुतंग जय तातन मातन भ्रासुतंग जय रोग न शोक न भोग भुवंग जय जंपय किन्नर जच भुजंग नर नार निपुंसक जाय किए गण किन्नर जच भुजंग दिए गज बाजर ताधिक पांद गण बाभूत भविक भवान तुम जय अंडज सेतज जेर रजंग रज भूम आकाश पताल जलंग रज

हृदय जय पाव पवन प्रचंड मय जय खंड अखंड प्रचंड किए जय छत्र छपाए दिए जय लोक चतुर्दचार रचे नर गंधर्व देव दे सच्चे अनुदूत अभूत छूत मत अनगाद अभ्याद अनाद कतंग अनखेद अभेद छेद नरंग जय चार चतुर्द चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेख रुगंग जय सोग न भोग न भोग जुवंग भो भंजन गंजन आद सरंग जय बंदत देव अदे नरंग गण किन्नर जज भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अनभंज प्रभा अनगंज भृतंग जय पार न पाव पूर्व मत अनखंड स्वरूप अदंड प्रभा जय जमपत भेद पुराण स्वा जय वेद कतेव अनंत कह जय भूत भूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेव जप सुत सिंध अधो मुक्ता तप कई कल्पन लगो कपताप कर कई कल्पन लो तप ताप कर नय नायक प्रभा निध पान पर

अगंज आज देव है भंज भंज जानिया, भूत भूत हसदा गंज गंज मानिया, अदेव देव है सदा भे भे नाथ समा सिद्ध वृद्धा।

पुराण है, अगंज है, अभंज है, करीम है, कुरान है, अकाल है, पाल है, ख्याल है, खंड है, न रोग है, न शोक है, न भेद है, न भंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न प्रिया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमात है, न शीत है, न सोच है, न घ्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दत्त है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र की विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न

पात है न चित्र चैन वर्ण है। बेअंत है अनंत तेज मानिया पूजा विजय सदा चित तेज मानिया है। न आध है न अभ्याध है अगाध रूप लेखिया दोख है दाख है छपता पी क्या है।

सो सो हटे सभा सुर विरोध दानो सर्व गागा हटे गंधर्व गवाय किन्नर गर्भे पड़ पड़ थके मां कबगड़त गाड़ अनंते हर हर कहो सबू मिल नाम नाम दुरंते भेद भेद न पायो लखे।

रंग सर्व लायक सर्व का सर्व ते अनुभंगे सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व को प्रपाल दीन बंध दयाल स्वामी आदि देव पाल दीन बंध प्रवीण श्री पर सर्व को करता रे वरण चक्र चक्र जाको चक्र चैन पारे जात बान गोत्र गाता रूप रेखना वर्ण सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व भूव को भरण दुष्ट गंजन शत्रु भंजन परम प्रमाते दुष्ट अर्थ श्रेष्ठ करता जगत में जगाते भूत भव भविक।

डावरू डबंग बबर बबंग भुजा फरंग तेज फरंग लंकुड़िया फांदे आयुद बंद सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टायत चमक भूकण दमक आत सित छमक पुन पनंग जय जय हो सी मैं खासुर मर्दने रामक बर्दन दात जनंग चंडार सुर चंडन मुन विमुंडन खंड खंडन खून खिते दावनी दमंगण भुजा फरंगण फणी फुंकारण ज्योति चिते सरबार विवेखन दुष्ट पर करखण पुष्ट पर हरखण दुष्ट मते जय जय हो सी मैं खासुर मर्दने भूम कास तल उर्ध दे दानी प्रासन सु छाप निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गुड़ गते रक्तासुर आचन ज्योत प्रभाचन निधन रांचन धर्म भ्रते रोनत अचिंती अनल विवंती जोग जयंती खड़क धरे जय जय हो सी मैं खासुर मर्दने पाप विनाशन धर्म करे अगोक निवारण दुष्ट प्रचारण सृष्टि निवारण सोधमते फणियर फुंकारण बाघ प्रकारण सर्व प्रहारण साधमते छाती स्नान अष्ट प्रभा

चार चार चमकार छछुरार धूम दुकान द्रव मुते दाढ़ी प्रदंते जोग जयंते मनुज मथंते गुरु कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूरज प्रत्येजन अष्टभुते।

किंकणी प्रसोहन सुरनर मोहन सिंगारोहण बिदलतले जय जय हो सी सब ठौर निवासने बाय पताले आकाश अनले संकट निवार अदम उदार तेज प्रखर कण तुंद तपे दुख दोख दयंती ज्वाल जयंती आद अनाद अगाध अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रता

चंचला चकंकी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तच सरे कर कसा कुठारे नरक निवारे अधम उदारे तुर बुझे दानी दमंके के अलंके आद तंके कुरु कथे जय जय हो श्री रक्तासुर खंडन सुम चक्रत निसुम मथे बारज विलोचन प्रथम विमोचन सोच विशोचन कौच कसे दानी प्रासे सुसरना से सुवृत सुभासे दृष्ट कसे चंचला चकंगी वेद प्रसंगी तेज तुरंगी खंड सुरंग जय जय हो सिंह खासुर मर्दन आद नाद का दुर्दंग घंटा बराजा रुड़जन बाजा ब्रह्म बाजा सनत सुरंग कोकिल सुन लाजा के लोक बाजा सुख उपराजा मधुरंग दुर्दन दल दच्छा मंदन रिच्छा सवय न पज्जा रोहरण जय जय हो सिंह खासुर मर्दन चंड चक्र तन आद गुरंग।

चाचरी प्रचोदन दुष्ट प्रबोधन रोज अरोधन पूर्वते धूमराज विधुंसन प्रहला प्रदूषण जाक विधुंसन स्वधमते जालपा जयंती शत्रु मतंती दुष्ट प्रधान गाड़गते। जय जय हो सिम खासुर मर्दन आदि जुगादे अगाध गते खत्रयान खतंगी अभय अभंगी आदरंगी अगाध गते प्रहलाद बिहंडन चिच्छुर दंडन तेज प्रचंडन।

तुम कहो देव सर्वम विचार जम कियो आप करते फसा जद अभूत अन भय अनंत कहो जथाम प्राण तंते कर्ता करी का दर कृपा अद्व अभूत अन भय दिया दाता दुरन दुख दुख हरद जय नेत नेत सब वेद काते कई ऊंच नीच की नो बना सब वार पार जाको प्रवास सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूड़े क्यों ना सेवंत ताहे कई मूड़ पत्र पूजा करन

सब रोग शोक ते रात रू अनभय अकाल अच्छा सुरु करुणा निदान कामल कृपा दुख दुख हर्त दाता दिया अंजन भीन अनभंजना जल तल प्रवाह सर्वत सा जय जाता ने भेद वर्ण जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय शत्रु मित्र दो एक सार अच्छा सुरु अब चल पार जानी न जय जय रूप रेख जय कास वास कह बास तास कह कान पे कह नाम तास है कौन जा जय शत्रु मित्र नहीं पुत्र भ्रा करुणा निदान कारण स्वरूप जय चक्र चैन रंग रूप जय खेत वे न कर्म का सब जी जंत की कर्तपा उर्दंग बृहद सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग अपा जुद्धंग अनु जय रूप रेख नहीं रंग रा

कई कोट इंद्र जय पानहार कई कोट रुद चुकिया दुआ की बेद प्यास ब्रह्मा अनंत जय नेत नेत निस दिन उच्चरंत तब साध सोइए दिनन की प्रतपाल करन संत बार गनी मन गारन पाच पशु नक नाग नराज सर्व

दाता दुख दुखन का दुलदुजन के बल में दल डार है। खंडे अखंड प्रचंड बहारन पूरन प्रेम की प्री संभार है। पार न पास गए पद्मा पे भेद का तेव अभेद उच्चार है। रोजी राज विलोकन राज गए रोग रुहान की रोजी नटार है। कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भविक मोहन बनाए। देव दे खप्पे हमें न भेव लखे भ्रम सुवरमाए। वेद पुराण कतेव पुराण हसे थक्के कर हाथ न आए। पूरन प्रेम प्रभाव बिना पश्यों की श्री पद्मा पत पाए। अनंत अगाध अद्वेक्ष भूत भविक भवान वह अंतभीन अनाथम आप अदाग।

सो पेट के पट बीज बचावे जज भजंस दान दे अभे तुम्हें सभी कर दयावे भूम आकाश पदार सात जज भजंस वैसे न्यावे पास गए नहीं पार प्रवाह को नेति नेत वेद पतावे हो थके सभी खुजिया सुरहार परे हरात न आवे नार से चतुरानंद से रूम नारिक से समूह मिल गायो वेद कदे न भेद लिखे सुभार भरे हरात न आयो पास गए नहीं पार उमापते सिद्ध सनात सनंतन त्यायो।

अत्र के चले अछित छत्र के धरे या छत्र धारियों के चले अमा शत्रुन के साल है दान के देवे अमा मान के बढ़या अवसान के देवे यहाँ कटया जमजाल है जोध के दिदया विरोध के मिटया मा बोध के देवया मा मानु के मान है ज्ञानु के ज्ञातमा बोध तक दाता देव कानु के काल मा कालु के काल है पूर्वी न पार पावे हिंगुला हिमालय तावे घोर कर दे जी गुण गावे तेरे नाम है जोगी जोग साधे पौन साधनक तेब बांधे अरब के अरबी अराध तेरे नाम है फरा के फरंगी माने कंधारी कुरे सी जन पश्चिम के पश्चिमी पछान निज काम है मरहट्टा मंगेले तेरी मन सो तपस्या करे दृढ़ वै तिलंगी पहचान धर्म काम है।

कहते इंद्र द्वार कहते ब्रह्मा मुख चार कहते कृष्णा अवतार कहते राम कहियत है कहते ससराज कहते सूरज प्रकाशी कहते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है कहते महादीन कहते व्यास प्रवीण कहते कुमेरे कुलीन कहते जज कहियत है करता है विचार पहना पूरन को पार पारता है दे पार निराधार लहियत।

नन को पहाड़ है, सिद्ध को स्वरूप है, के बुद्ध को विभूत है, के क्रोध को अभूत है, के अक्षय अविनाशी है, काम को निंदा है, के खूबी को दीनदा है, गनीमन गरिंदा है, के तेज को प्रकाशी है, काल हूं के काल है, के शत्रुन के साल है, के मित्रन को पुकार है, के वृद्धता की वासी है, योग को जंत्र है, के तेज को तंत्र है, के मोहनी को मंत्र है, के पूर्ण प्रकाशी है, रूप को निवास है, के बोध को प्रकाश है, के सिद्धता को वास है, के बोध हमको कर है, देवन को देव है, निरंजन अभे है, देवन को देव है, के सुधता को सर है, ज्ञान को बचैया है, ईमान को दिवैया है, जम जाल को कटैया है, के कामना को कर है, तेज को प्रचंड है, खंडन को खंड है, के महिपन को मंड है, के स्त्री है, नर है, विश्व को परम है, के अवधा को हरण है, के सुख को करण है, के तेज को प्रकाश है, पाइये न पार अपार वार उनको पार जागो, कीजत विचार सो विचार को निवास है, हिंगुला हिमालय गावे हब।

हंसनी से सिहारू हीरा सी सेना पा गंगा का सी तार चली साधो सिंध रूल के पारा सी पलाऊ गढ़ रूपा का सी रामपुरे सोरा सी सुरंगाबाद के रही झूल के चंपा सी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदागढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी कलाश कमाऊ गढ़ काशीपुर सीसा सी सुरंगाबाद का सोयत है हिमा सी हिमालय हर हार से हलब्बा ने हंस का सी हाजीपुर देखे मोहियत है चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रागिरे चांदनी सी चांदागढ़ जो

शीश के दुरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गायत है। भकरी कंदारी गोर गखरी कर देता चारी पावन के हारी तेरो नाम क्या है। पूरब पलाऊ काम रूप औ कमाऊ।

0: लक्ष्मी खड़ी तुम्हरे दरबारा सरदे ते कृपाशकारा धरा
1: नानक गुरु गोविंद सिंह जी पुनर अवतार जाग मग लोग विराज।

सिंह साहब भाई गुरमीत सिंह जी मीत ग्रंथी साहब सत श्री अकाल। सिंह साहब भाई गुरदीप सिंह जी धूपिया जी बोले सोनिहार भाई सतपाल सिंह जी

आओ साध संगत जी हुण विलक्षण रंग विच रंगे जाइए। भाई हरजोत सिंह जख्मी जी ते आपां बड़े प्यार नाल एक बजे तक सारी कीर्तन की हाजरी सरवण करनी है। दास भी बैठेगा ते संगत ने भी जो वादा किया साडे नाल वो पूरा करना। आपां पूरे कीर्तन का रस माणना ते दूजी मैं बेनती होर जरूरी कर लगा साध संगत जी, असी बहुत सत्कार बहुत प्यार बहुत असीस अति सत्कारयोग सिंह साहब संत बाबा कुलवंत सिंह जी समुची बोर्ड की टीम जिहड़े हर साल ये सेवावां सानू बाबे की याद में मनाने देंदे ने उन्हां सारयां दा बड़ा शुकराना। और बड़े प्यारे कीर्तनी इत्थे पहुंचे हुए ने सारयां दा बहुत शुकराना। आओ संगत नूं बेनती थोड़ा अगे अगे आ जाओ। भाई सुखप्रीत सिंह जी इत्थे अगे अगे आ जाओ। भाई साहब का हुक्म बेनती इन्होंने हुक्म इन्हों की बेनती साढ़े वालों हुक्म गुरु के कीर्तनिए ने। हाँ जी भाई इन्हों तो बाद भाई सिमरप्रीत सिंह जी बड़े प्यारे कीर्तनी, फिर भाई गुरसाहब सिंह सुरमा छोटा रवनूर सिंह जी उन्होंने कल हाजरी है पर वो तैयार होकर अज ही आ गया। पांच मिनट का उन्होंने शब्द पढ़ना तो तुम्हें आनंद आएगा सारे। बाकी बीबा गुरप्रीत कौर कल की हाजरी के ये कीर्तने होर बड़े बेअंत कीर्तने बीबा जसलीन कौर मोंगा जी ट्रेन मिस हो गई आ गए ने एक शब्द कल के दीवान के हाजरी करे। सो आओ बड़े प्यार भाई हरजोत सिंह जखमी जी तो मैं संगत को बेनती करदा जिन्होंने श्री चौपाई साहब के पाठ कर रहे हैं तो परसों तक उसने परसों आप अरदास करनी है तो परसों तक दास के वट्सएप पर लिखन की कृपालता करनी किन्ने किन्ने पढ़े गए हूँ तो अच्छा सवेर तो शुरू हो जाओ तो सवेरे जरूरी तख्त साहब के उपर ही सचखंड वासी संत बाबा सुच्चा सिंह की प्यारी याद के जो श्री अखंड पाठ साहब के भोग पैने ने उपर पौड़ियाँ चढ़ के बाबा सोहन सिंह जी और समुचे परिवारों की अपनी जी संगत आई है वो उत्थे 7:30 बजे उत्ते पहुँचने की कृपालता करनी। 8:30 तक सारी समाप्ति हो जाती है अरदास हो जाती है फिर जिहड़ी संगत ने सरदार मैं ग्रुप च पाया हो सरदार कमलजीत सिंह जी सरदार गुरप्रीत सिंह जी लुधियाने वाले उन्होंने वट्सएप करना किन्नी संगत ने बसों के जाना क्योंकि बाद के मुश्किल आदि ने। सो वो आप पूरे 9 बजे इतों नेड़े नेड़े गुरु घर आले पावे माता जी के स्थान पर जावे आप जावे हीरा घाट जावे शिकार घाट जावे दर्शन करा माल टेकरी साहब। सो सारी संगत को बेनती है कि प्रवान करनी आओ साज सुर हो गए ने कीर्तन सुने अद्धे घंटे लिए भाई हरजोत सिंह जख्मी जी आप दर्शन कर।

सतसंग जी उस्ताद जी ने इशारा किया कि 5 मिनट में कहा एक बारी ये रीत है एक बारी सारी संगत थोड़ी जी मेरे लिए कठिन है बंदिश सावन आया चिमचिमा आप जी जरा करो कृपा सफर मुश्किल कुशा ने मुश्किल हल करने वाले ने मुश्किल सहल करने वाले ने एक बारी सब आखो जी संगत थोड़ी थोड़ी अगे न हो जाए ताकि जेडे बाद विच आउन फिर किसी ने डिस्टर्ब ना करन आखो जी।

सतगुरु जी बड़े प्यारे प्यारे गुलदस्ते थे फुल बहुत प्यारा जहा फुल गुरु गोबिंद सिंह महाराज दर दे प्यारे जे कीर्तनी है भाई हरजोत सिंह जखमी जी भाई भावनप्रीत सिंह जी भाई जसप्रीत पाल सिंह जी बड़ा आनंद बनाया जी। मैं हुण बड़े सत्कार नाल बेनती करदा भाई सिमरप्रीत सिंह जी हजूरी रागी श्री दरबार साहब अमृतसर साहब अजो के नवतन कीर्तनी है जिन्होंने कभी असी कनेडा देखते हैं कदे अमेरिका चले जाते हूँ इंग्लैंड तो आए ने हफ्ता पहला तो जो फोन करिए तो अज मैं दिल्ली अज मैं इतने हाँ तो संगत इन्होंने इन्ना प्यार कर दी उचेचे तौर पर परिवार के नाल संगती रूप में सारे जथे अपने अपने फैमिली मैंबरस नाल सारी संगत बैठी बड़े प्यार नाल इन्होंने भी जी आयान शुकराना। मैं बहुत सत्कार नाल बेनती करदा सारी संगत नू आपां उन्हां नू भी सुनना है जिहड़े अजोके नवतन कीर्तनी मेहनत करके जिन्होंने बड़े वड्डे कीर्तनी बनना। इन्हां तों बाद भाई गुरसाहिब सिंह सूरमा जिहड़ा छोटा जिहा ही जदों साडे को अकैडमी च बाबा सुच्चा सिंह गुरमत संगीत अकैडमी च आया तो उहदा पहला ही एक गल सी कि मैं सचखंड श्री हरिमंदर साहिब दे दा कीर्तनिया बनना। मैं भाई मनिंदर सिंह जी ने कल ही सत्कार योग बेनती करना क्योंकि ये भी सिलैक्शन कमेटी के मैंबर ने रागी सिलैक्शन कमेटी के तो मैं क्या इन्हों इदा भी ना लगे कि कभी इस तरह होया नहीं क्योंकि सिफारश है सारिया बाणिया कंठ ने आसा दी वार कंठ है सारा शब्द इन कंठ हो जाता है तो सुरीलेपन की आप जानते हैं शिखर है इन्ना सुरीला कंठ तो महाराज कृपा करे। मैं हमेशा जिक्र करदा इहदी वड्डी भैण साडी बेटी गुरसिमरन तो इन्हों मम्मी डैडी जेडे नाल लैके चलते हैं ये बच्चे अच्छ दुनिया से नाम हो गया दुनिया इन्हों प्यार कर दी बड़ी मैंने खुशी हुई जो इन्हों कीनिया तो फोन आया कि असं तो बुलाना है तुहाडा कीर्तन सुनिया तो ये सचखंड श्री हर तख्त श्री हजूर साहब दियाँ चार पाँच साल दियाँ हाजरियाँ इतों दरकत तो बरकत तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज दिन बड़ी सारिया मिलदियाँ इन्होंने भी कीर्तन सरवण करवाना और बड़े कीर्तने जे आए दिन उन्होंने दस दस मिनट लाने सारे ने। सो कल भी इदा दीवान सज्जन गए जिन्ना चर साज सुर होंगे ने कल भी दीवान सज्जन गए कल पूरे 9 बजे आप दीवाना की शुरुआत कर देनी है। सब तो पहला कई पल कल भाई हरजोत सिंह जखमी जी वो हाजिरी भरनगे उन्होंने तो बाद भाई सिमरप्रीत सिंह जी भाई मनिंदर सिंह जी भाई ईश्वर सिंह जी जिन्हें सवेरे आसा की वार है इस करके वो विश्राम करके क्योंकि हुणे औरंगाबाद तो आए ने वो कल दे दीवाना च हाजरी भरनगे। बीबा हरगुणप्रीत कौर जी होर प्यारे प्यारे कीर्तनी ने जिन्होंने तुहानू दर्शन करने साडी इन्हां दी अपनी अकैडमी बच्चों की बाबा सुच्चा सिंह गुरमत संगीत अकैडमी के बच्चे बच्चियां सारे ने मिलजुल के क्योंकि इन्हों का मन हुंदा जिहड़े प्यारे कीर्तनी आए उन्होंने वध तो वध असीं सुनिया जाए पर इन्हां सारियां दे मन इकट्ठ रूप दे विच आप जी नूं शब्द सरवण करवाउणगे। आओ साज शुरू हो गए ने उस्ताद अनकबार सिंह जी नाल ते भाई अंतरप्रीत सिंह जी नाल गायन करनगे भाई बिक्रमजीत सिंह जी रबाबी नाल रबाब की सेवा कर रहे हैं भाई जशनदीप सिंह रबाबी वो नाल रबाब जा रहे हैं बिटिया नाल बैठी है ते भाई गुरसागर सिंह जी ना ही बड़ा प्यारा तंती साज सारे ने बजा रहे हैं। इन्हों तो बाद भाई कमलजीत सिंह उन्होंने बेनती है होर भी जेडे साज बजाते हैं सारे अपने अपने हाजरियां जो अमरजीत सिंह जी तुम रबाब बजाओ

आओ जी अपन सारे रल के उस रूहानी रूह जिन्हां दी याद दे विच जिन्हां दे प्यार दे विच आपां सारे बैठे हाँ महापुरख संत बाबा सुच्चा सिंह जी जिन्हां दा अथाह प्यार असीसां साडे उस्ताद जी प्रिंसीपल सुखवंत सिंह जी प्रिंसीपल भाई जसपाल सिंह जी इन्हां सारिआं ने माणिआ ये भी सच है अज दे इस समागम जिहड़े हो रहे ने इस समागम दा मुढ है साडे उस्ताद जी सानू सारिआं नू पता है असीं उन्हां दे प्यार दे विच अज ही गल करदे सां जिन्नी संगत आई है तकरीबन 750 दे लागे उस सारिआं दा एक मुढ है असीं सारे आए हाँ ये हजूर साहब का तख्त जिथे सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सदा ही हाजिर रहिंदे ने ऐसे महान स्थान पर वड्डियां रूहां दीआं यादां उन्हां दे जोड़ मेले मनाए जा रहे ने पर सानू सारिआं नू पता है आपां सारे एक इश्क दे विच साडे उस्ताद जी दे प्यार दे विच आपां सारे आए हैं उसी प्रेम दे विच ये महान कीर्तनी है भाई साहब जी भाई हरजोत सिंह जी जख्मी भाई साहब जी भाई मरिंदर सिंह जी हजूरी लागे सचखंड श्री हरिमंदर साहब बहुत सत्कार जो सारे कीर्तनी आए ने इस प्रेम दे विच इस इश्क दे विच आए ने जी कि आपां सारिआं ने उस प्यार च एक शब्द गाउणा है जी जैसे सत मंदिर कंचन की उसार दिने तैसा पुन सिख को एक शब्द सिखाए मालक जी कहिंदे मैं सारा कुछ वार दिया मैं सोने दे मंदिर बना बना वार दिया जिहड़ा किसी ने एक शब्द सिखा दे जी उस्ताद जी ने वेखो ये सारे कीर्तनी हरिमंदर साहब विच तकरीबन 17-18 जत्थे वाधी आउणे ने जिहड़े कीर्तन करदे ने उस्ताद जी नूं प्यार करदे ने उन्हां कोलों सिखदे ने सो आओ सारे रल के शब्द पढ़ना मैनूं हुकम कीता सी कईआं ने कहिंदे राग गाउणा भाई हरजोत सिंह जी ने बाद राग गाउणा जानबूझ के ना जंगल च जाके बब्बर शेर नूं ललकारन वाली गल है उन्हां दे बाद राग आओ आपां सारे प्यार नाल सारे रल के कीर्तन करिए बड़ा प्यारा शब्द है जी तुसीं मोबाइल च कढ लिओ आपां प्रेम दे विच हो के सारिआं ने शब्द गाएंगे जैसे सत मंदर कंचन के उसार दिने तैसा पुन सिख को एक शब्द सिखाए का जैसे सत

साल इत्थे दसम बाणी दा कीर्तन करदे ने। हर साल आउण तों पहलां इन्हां ने इह कहिणा, उस्ताद जी मैनूं नवीं बंदिश बणा दो। इस वारी कहिंदा मेरा 16 राग गाण नूं दिल करदा है ते 15 मात्र इस तरह गा रहे जिवें कैरवा गा रहा हुंदा कोई। इन्नी टफ कंपोजिशन। सो सतगुर कृपा करन, बख्शिश करन, असीस देनी भाई गुरसाहिब सिंह जी नूं। मैं बड़े सत्कार नाल बेनती करदा संगत नूं, प्रशादा बाणी छक के फिर आ जाओ, आपां आनंद माणना। कल सवेरे 7:30 बजे श्री अखंड पाठ साहिब दे उपर भोग पैणगे ते पूरा आनंद मारो। सारे कीर्तनियां दा भाई मनकरण सिंह जी, बड़ी कृपा है इन्हां ते। देखो नौजवान अजे छोटी जी उम्र है पर इन्ना रियाज इन्हां ने मेहनत कीती ते मेहनती कीर्तनियां ने। सो मैं इन्हां नूं बेनती करदा बड़े प्यार नाल, आप जी नूं 15 मिनट दी हाजरी एक राग या रीत जो इन्हां दा मन करदा सरवण कराउण। ते मैं प्रिंसीपल भाई जसपाल सिंह नूं बेनती करदा, प्रिंसीपल साहब अगली सेवा तुसीं आ जी निभाओ। ते बड़े प्यार नाल भाई मनकरण सिंह जी आप जी नूं एक शब्द दी हाजरी सरवण कराउंदे ने। भाई गुरसाहिब सिंह लई मैं फिर बेनती करदा, जरूर इस स्थान ते अरदास करियो। वो बच्चा बड़ा मेहनती है, रियाजी है, ते वह ही सोचते रहीदा कि सुर भी नहीं किते उतरदी, तैयार भी गला इन्ना ताल दी भी जिथे मर्जी आके सम फड़ लैंदा। ये कृपा ही है किसी पूर्वले जन्म दी, साडे सिखाया नहीं इन्ना तैयार हुंदा गला, इन्हां दा अपना साधन है। सो महाराज कृपा करे, आओ बड़े प्यार नाल भाई मनकरण सिंह जी इन्हां नाल साज वजा रहे ने। भाई तिशनूर सिंह जी मैं तो पछाणिया नहीं, पहले गोल दस्तार से, ये साढ़े दिल्ली के विद्यार्थी ने, मैं क्या देखे देखे लगते हैं। भाई अमरजीत सिंह जी वो नाल रबाब से संगत करनगे, आओ बड़े प्यार नाल, बड़े प्यार नाल भाई मनकरण सिंह जी आप जी ने एक शब्द सरवण कराते हैं। सरवण करो जी, अजे साज उन्होंने सुर हो रहे हैं। कल दे दीवान साध संगत जी 9 बजे इतने सज जाएंगे। सो सारी संगत को बेनती है, कल के दीवाना दे विच दास ने सब तो अखीर तो शब्द पढ़ना है। हुण तुसीं इह मैं देखना तुसीं बैठना कि नहीं, सब तो लास्ट साडी हाजरी है। सो सारे ने उदों तक बैठना कल भी, आओ प्यार नाल। ये तबला भी बड़ा सोहना बजाउंदे ने, इस करके तबला आप बजाउणा हुंदा ना, वो बड़ा निक्की निक्की सुर दा ध्यान रखदे ने। चलो जी प्यार नाल सुणो जी।